मन में मन में विश्वास, वाणी में मिठास और कर्म में लगन रखिए। हर नई सुबह सफलता का एक नया द्वार खोलती है।

दैया लाए उठाए लियो गिर नख पर बंसी बजावत धेनु चलैया जगके मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा

0: नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते।
1: जिसकी वाणी में मिठास होती है उसके लिए हर राह आसान हो जाती है। प्यार और सम्मान का सबसे सुंदर माध्यम मधुर शब्द ही हैं। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहे आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2009

0: 70 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगिट बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM Rainbow 101.9
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి
4: 300కి 300 మార్కులు సాధించిన
5: దేశం మొత్తంలో ఒకే ఒక్కడు
6: మన శ్రీ చైతన్య విద్యార్థి.

0: న్యాయబంధు, చట్టపరమైన భద్రత, విషయ పరిజ్ఞానం వంటి విషయాల కోసం దిశా స్కీమ్ లో చేరండి. టెలీలా టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 14454 మరియు www.tele-law.in వెబ్సైట్ ద్వారా చట్టపరమైన సహాయం పొందవచ్చు.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. आज का शो एक ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करियो जो हम सब की लाइफ को हर रोज़ इफेक्ट करता है, लेकिन शायद हम उसके बारे में इतना सोचते नहीं हैं। कभी नोटिस किया है कि हम कितनी सारी चीज़ें बिना किसी रिटर्न रूल के फॉलो करते हैं? लिफ्ट में खड़े होने का तरीका, लाइन में वेट करना, किसी को स्माइल से ग्रीट करना, या फिर पब्लिक प्लेसेस में कैसे बिहेव करना। आज हम बात करेंगे द हिडन रूल्स दैट शेप आवर डेली लाइव्स के बारे में, वो अनरिटन रूल्स जो सोसाइटी को स्मूथली चलाने में हेल्प करते हैं और जो हम सब अनोइंगली फॉलो करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड बिकॉज आज की कॉन्वर्सेशन होगी रिलेटेबल, थॉट प्रोवोकिंग और होपफुली थोड़ी सी एंटरटेनिंग भी। अब मूड को और भी अच्छा बनाते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ। डोंट गो एनीवेयर, यू आर लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9 एंड द जर्नी हैज़ जस्ट बिगन।

Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi and a welcome to Namaste Hello Adab. Yes, what all you are doing right now? I'll ask you a quick question. Phone unlock karke kabhi bhool gaye ho ki unlock kyun kiya tha? Sach bataiye. Aajkal phone hamare saath हाथ में कम और हम फ़ोन के साथ कंट्रोल में ज़्यादा लगते हैं. सुबह उठते हैं फ़ोन, खाना आने का वेट फ़ोन, लिफ्ट का वेट फ़ोन, सोने से पहले अगेन फ़ोन. माना अंदर की दी कॉमन आईपॉइंट कदा. कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि बस एक मैसेज चेक करना है, लेकिन फिर रील स्टार्ट और फिर एक रील से दूसरी रील और पता ही नहीं चलता 20 मिनट्स, सॉरी 1 घंटे कैसे निकल गए. सोशल मीडिया इज़ अमेजिंग. इट कनेक्ट्स पीपल, हमें इंफॉर्मेशन देती है, एंटरटेनमेंट देता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ या सोशल मीडिया मुझे यूज़ कर रहा है. टेक्नोलॉजी को टूल रखिए, हैबिट मत बनाइए. अगली बात और भी इंटरेस्टिंग है, क्या सोशल मीडिया की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन जो है छोटा हो रहा है, क्योंकि आजकल 2 मिनट भी वेट करना मुश्किल लगता है. सो स्टे ट्यून, स्टे विथ मी टू योर फेवरेट स्टेशन एफएम रेनबो 101.9.

0: ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

फिर एक ऐसा रूम बन जाता है जहां सब लोग आपसे एग्री करते हैं, इसे कहते हैं इको चैम्बर। आपको लगता है सब लोग वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो, लेकिन रियलिटी में दुनिया बहुत बड़ी है। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट ओपिनियंस। मेरे एक दोस्त ने बोला था सब लोग इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने पूछा सब लोग या तुम्हारा फीड, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सिर्फ अपनी पसंद की बातें मत सुनिए, कभी कभी दूसरी साइड भी समझ समझिए। आफ्टर ए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, सम ग्रेट ट्रैक, एक ऐसी बात करेंगे जो हम सबको कभी अफेक्ट करती है, कंपैरिजन। सोशल मीडिया और कंपैरिजन का कनेक्शन क्या है? सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: స్పీకర్లు
1: ఒక్క శ్రీ చైతన్య నుండి.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
3: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा.

0: थकान नहीं लगेगी।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR

0: ಈಗ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है. श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है.
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है.
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे. बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी. श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की. वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी. भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है. इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे. उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे. इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे. आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है. पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई. लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है. भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए.
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है. यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है. मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा. पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे

0: दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: क्लेम्स बाय पाकिस्तान वुड नॉट चेंज दिस फंडामेंटल रियलिटी।
2: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. The revised directions have come into effect immediately. Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said, students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. Delhi police has arrested a hotel cook named Keshav Negi in connection with the Malviya Nagar fire incident. The fire broke out at a hotel in Malviya Nagar on the 3rd of this month and claimed the lives of 21 people while injuring 40 others. Earlier, the police had also arrested the hotel owner under charges of culpable homicide and other relevant sections. The police stated that further interrogation and investigation is underway. The 29th edition of the India-US Army to Army Staff Talks was held in Hawaii, co-chaired by Lieutenant General Rajiv Ghai, Deputy Chief of the Army Staff Strategy and Lieutenant General Joel Vowell, and Deputy Commanding General of the US Army Pacific. The discussions focused on strengthening bilateral defense cooperation, enhancing interoperability, expanding professional exchanges, and deepening military collaboration in support of shared security interests. Mauritius has imposed a temporary entry ban on foreign nationals who have traveled to, transited through, or stayed in Congo, Uganda, or South Sudan over the past 21 days following the latest outbreak of the Ebola virus. Mauritian citizens and foreign residents holding valid work, residence, occupation, business or student permits will still be allowed to enter the country, but will be subject to a mandatory 21-day quarantine if they have visited any of the 3 countries within the previous 3 weeks. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today congratulated the newly appointed Foreign Minister of Slovenia, Tone Kaiser, and expressed his desire to work together. Tony Kaiser, a former diplomat with more than 30 years of experience, was officially sworn in under the newly endorsed right-wing coalition,

Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RG Sri Vaishnavi. The time in the studio clock is 12:11. Yes. Imagine, आप एक क्रू में एंटर करते हैं बिना एक वर्ड बोले. कितने लोग आपके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, कभी सोचा है? वेलकम बैक दोस्तों. हम सब कहते हैं कि किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि हम सब करते हैं और बहुत जल्दी करते हैं. कभी किसी को देखते ही लगता है ये तो बहुत फ्रेंडली लग रहा है, कभी लगता है पता नहीं क्यों बट इसे बात करने का मन नहीं हो रहा है. और फनी बात यह है कि उस वक्त हम उस पर्सन के बारे में कुछ जानते भी नहीं होता है, बस उनका स्माइल, ड्रेसिंग स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज या कॉन्फिडेंस देखकर हम ब्रेन एक छोटा सा स्टोरी बना लेता है. कॉलेज का फर्स्ट डे या ऑफिस का फर्स्ट डे याद कीजिए, सब लोग सीक्रेटली एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो सबसे सीरियस लग रहा था वही सबसे फनी निकला. इसीलिए फर्स्ट इम्प्रेशंस इंटरेस्टिंग तो होते हैं लेकिन हमेशा अक्यूरेट नहीं होते. आज का थॉट सिंपल है, फर्स्ट इम्प्रेशन एक ट्रेलर है, पूरी मूवी नहीं है. और अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारा ब्रेन इतनी जल्दी ओपिनियंस बनाता है क्यों है, इसके पीछे साइकोलॉजी है या सिर्फ आदत, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सॉन्ग के बाद. स्टे ट्यून्ड.

0: ఎలాంటి రుసుము లేకుండానే న్యాయ సలహాలు టెలీలా యాప్ www.tele-law.in వెబ్సైట్ లేదా టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 14454 ద్వారా పొందవచ్చు.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. If you are just tuning to our station, welcome. I was talking about first impressions and its effects. हमारा ब्रेन जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी कभी कभी इतना जल्दी डिसीजन लेता लेता है कि बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। अब सवाल ये है कि हम लोगों के बारे में इतना जल्दी ओपिनियन क्यों बना लेते हैं। रीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स यूज़ करता है। रोज़ इतने लोग मिलते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन आती है कि ब्रेन हर चीज़ को डिटेल में एनालाइज नहीं कर सकता, इसीलिए वो क्विक कंक्लूजन्स बना लेता है। कोई कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हो तो लगता है कि लीडर होगा, कोई काम बोल रहा हो तो लगता है कि शय होगा, कोई बहुत हंसते हुए मिलते हो तो लगता है कि पॉजिटिव पर्सन होगा। लेकिन रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। कभी कभी जो पर्सन रूड लगता है वो एक्चुअली स्ट्रेस में होता है, जो एरोगेंट लगता है वो नर्वस हो सकता है, और जो क्वाइट लगता है वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है। हम सब ने कभी ना कभी किसी को गलत समझा है, और सच बताऊं कभी ना कभी किसी ने हमें भी गलत समझा होगा। तो लेसन ये है कि क्विक इम्प्रेशंस नॉर्मल है, लेकिन उन्हें फाइनल ट्रुथ मान लेना गलत हो सकता है। और अब एक छोटा सा सवाल, अगर फर्स्ट इम्प्रेशन गलत हो सकता है तो क्या कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है जहाँ लोग कम्प्लीटली रॉन्ग प्रूव हुए? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मिलते हैं अगले टॉक में। स्टे ट्यून्ड।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. As I was talking about first impressions and I was going to tell about a story. कभी किसी को पहली बार देखकर लगा हो कि ये बहुत बोरिंग है और बाद में वही आपका फेवरेट पर्सन बन गया हो. चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं. मान लीजिए ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है. पहले दिन वो ज़्यादा बात नहीं करता, लंच भी क्वाइटली करता है, मीटिंग्स में भी सिर्फ काम की बात करता है. धीरे धीरे कुछ लोग उसके बारे में असम्पशंस बनाना शुरू कर देता है. यार बड़ा एटीट्यूड लगता है, टीम में मिक्स नहीं होता है, थोड़ा एरोगेंट सा लग रहा है. लेकिन कुछ हफ्तों बाद पता चलता है कि वो एक्चुअली नहीं, नए नए सिटी में शिफ्ट हुआ है, किसी को जानता नहीं है और नेचुरली थोड़ा रिजर्व्ड है. और फिर वही पर्सन सबका फेवरेट कोलीग बन जाता है. अब सोचिए, पर्सन तो वही था, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग बदली थी. बहुत बार प्रॉब्लम लोगों में नहीं होता है, हमारी सोच में होता है. प्रॉब्लम हमारी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में होते हैं. इसीलिए कहते हैं हर इंसान एक पूरी स्टोरी है. हम अक्सर सिर्फ उसका एक पेज देखकर पूरी किताब जज कर लेते हैं. सो द टेक अवे इज़ माई फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम, अजम्पशंस टेक्स सेकेंड्स. लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर किसी ने हमारे बारे में पहला इम्प्रेशन गलत बना लिया हो तो क्या उसे बदला जा सकते हैं? चलिए उसका जवाब लेते हैं अच्छे गाने सुनने के बाद.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listeners. If you are just tuning into FM Rainbow 101.9, this is RJ Sri Vaishnavi, and I was talking about first impressions. So many people say first impression last impression hota hai. ये लाइन हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या ये सच है? अच्छा सोचिए, अगर पहले दिन आप नर्वस थे, इंटरव्यू में अटक गए, किसी इवेंट में ऑकवर्ड फील हुआ, या किसी से मिलते वक्त आपका मूड अच्छा नहीं था, तो क्या उस एक मोमेंट से लोग आपको हमेशा वैसे ही याद रखेंगे? गुड न्यूज इज यूजुअली नो. रिसर्च और रियल लाइफ दोनों एक दिखाते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन स्ट्रांग ज़रूर होते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं. ह्यूमन बींग्स कंटिन्यूसली लर्न. जैसे जैसे लोग हमें बेटर जानते हैं, नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते हैं, वैसे वैसे उनकी ओपिनियन भी चेंज हो सकती है. इसीलिए अगर कभी लगा हो कि किसी ने आपको गलत समझा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. कंसिस्टेंट बिहेवियर, हॉनेस्टी और टाइम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं. और दूसरी तरफ, अगर हमने किसी के बारे में जल्दी ओपिनियन बना ली हो, तो हमें भी उससे रिवाइज करने के लिए रेडी रहना चाहिए. क्योंकि लाइफ में सबसे डेंजरस सेंटेंस शायद ये है कि मैंने उसे देखते ही समझ लिया था. नहीं, लोग इतने सिंपल नहीं होते माय फ्रेंड्स. सो माय डियर लिसनर्स, फर्स्ट इम्प्रेशंस मैटर, बट सेकेंड चांसेस मैटर इवन मोर. और उसी थॉट के साथ आज के टॉपिक को यहीं पॉज करते हैं और एक प्यारा सा गाना सुनते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 MHz पर। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

दोस्तों, आज के नरंग प्रोग्राम में हम पेश करेंगे सबसे पहले हस्बे दस्तूर हरफ ताबिंदा। आज का हरफ ताबिंदा होगा जनाब मोहम्मद नूरुद्दीन का। भुलाए नहीं भूलते के तहत चंद पुराने हसीन, दिलकश और दिल को छू लेने वाले फिल्मी गीत आपको सुनवाए जाएंगे। नरंग प्रोग्राम के आखिर में भुलाए पयाम शब आप सुनेंगे।

इल्म सबसे बड़ी दौलत है। हम अक्सर दौलत को सोने चांदी, जायदाद और बैंक बैलेंस से जोड़ते हैं। बिलाशुबा ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा करती हैं, लेकिन क्या ये हकीकी और पायदार दौलत हैं? ज़रा गौर कीजिए। ये मादी चीज़ें एक लम्हे में ख़त्म हो सकती हैं। कुदरती आफात, मौशी बहरान या चोरी, ये सब कुछ हमारी मादी दौलत को खाक में मिला सकते हैं। लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई आफत तबाह

नहीं कर सकती और ना ही ये वक्त के साथ कम होती है, बल्कि ये तो बांटने से बढ़ती है। जितनी ज़्यादा हम इल्म को दूसरों के साथ बांटते हैं, उतना ही ये हमारे अंदर पुख्ता होता जाता है। इल्म इंसान को जहालत के अंधेरों से निकालकर रोशनी की दुनिया में लाता है। ये हमें सही और गलत में तमीज़ करना सिखाता है, अच्छे और बुरे की पहचान कराता है। एक तालीम याफ्ता शख्स न सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि अपने ख़ानदान, माशरे और मुल्क के लिए भी फ़ायदा मंद होता है। इल्म इंसान को इज़्ज़त और विखार अता करता है। तारीख गवाह है कि वही कौमें तरक्की की मनाजिल तय करती हैं जिन्होंने इल्म को अपना शौर बनाया। आज की दुनिया में भी वही ममालिक आगे बढ़ रहे हैं जो तालीम और तहकीक पर सबसे ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। इल्म हमें गौर व फिक्र की सलाहियत देता है, हमें नए ख्यालात को जन्म देने की तरगीब देता है, ये हमें तनखीदी सोच का हामिल बनाता है और हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करता है। इल्म के ज़रिए ही हम नित नए इजादात करते हैं, साइंसी तरक्की के मनाजिल तय करते हैं और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। इल्म खुद एतमादी की बुनियाद है। जब इंसान इल्म हासिल करता है तो उसमें खुद एतमादी पैदा होती है, उसे अपनी सलाहियतों पर भरोसा होता है और वो चैलेंजेस का सामना करने से घबराता नहीं। एक आलिम शख्स किसी भी महफिल में बाविखार तरीके से बात कर सकता है, अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है और दूसरों को खायल कर सकता है। ये खुद एतमादी उसे ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी की तरफ ले जाती है। इल्म अखलाकी इकदार का सरचश्मा है। इल्म सिर्फ हकायक का मजमुआ नहीं, बल्कि ये इंसान को अखलाकी और रूहानी बुलंदियों पर भी ले जाता है। तालीम हमें दूसरों का एहतराम करना, इंसाफ पसंद होना और माशरती जिम्मेदारियों को समझना सिखाती है। ये हमें तंग नज़री से आज़ाद करके वसी नज़री अता करती है। एक तालीम याफ्ता माशरा अखलाकी तौर पर ज़्यादा मजबूत होता है और उसमें जराइम की शराह कम होती है। इल्म आज़ादी का रास्ता है। इल्म इंसान को ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद करता है। ये उसे तासुबात, दखियानोसी ख्यालात और बेबुनियाद अकायद से निजात दिलाता है। एक बाइल्म शख्स अपने फैसले खुद कर सकता है और किसी के दबाव में नहीं आता। इल्म की आज़ादी उसे नई सोच, नए अफकार और नई राहें तलाश करने पर उकसाती है। इल्म इंसानियत की खिदमत का ज़रिया है। तारीख के औराख गवाह हैं कि इल्म ही वो क़ुव्वत है जिसने इंसानियत की सबसे ज़्यादा खिदमत की है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंसदान, असातिज़ा, ये सब इल्म के ज़रिए ही इंसानियत की फलाह के लिए काम करते हैं। बीमारियों का इलाज, नए टेक्नोलॉजी की ईजाद, गुर्बत का खात्मा और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, ये सब कुछ इल्म के बग़ैर मुमकिन नहीं। इल्म नस्लों की तामीर करता है। एक तालीम याफ्ता फ़र्द न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है बल्कि अपनी आइंदा नस्लों के लिए भी एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है। वालिदैन जो इल्म की अहमियत को समझते हैं, वो अपने बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हैं और इस तरह इल्म की ये रोशनी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहती है। ये इल्म ही है जो कौमों को मजबूत बनाता है और उन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करता है। इल्म एक ना ख़त्म होने वाला ख़जाना है जो हमें हर रोज़ नई बसीरतें अता करता है। याद रखिए, दुनिया की तमाम मादी दौलत एक दिन फना हो जाएगी, लेकिन इल्म की रोशनी हमेशा बाकी रहेगी। आइए हम सब इस कीमती दौलत को हासिल करने में कोई कसर न छोड़ें और उसे दूसरों तक पहुंचाने का फ़र्ज़ अदा करें। यही वो रास्ता है जो हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी से हमकिनार करेगा।

हरफ़े ताबिंदा अभी आपने सुना, तहरीर थी जनाब मोहम्मद नूरुद्दीन की। आइए दोस्तों, आप सुनते हैं भुलाए नहीं भूलते के तहत पुराने फिल्मी गीत। सामिन इकराम, जिंदगी के सफ़र में कभी खुशियों की बहार आती है तो कभी आजमाइशों की धूप, मगर जो शख्स हर हाल में मुस्कुराते हुए अपने ख्वाबों की धुन गुनगुनाते रहे, वही कामयाबी की मंजिल तक पहुंचता है। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम सुरेले गीत।

गाता जा, बुलाए नहीं भूलते के तहत हमें यही पैगाम देता है कि हालात जैसे भी हों, उम्मीद का दामन न छोड़ो, अपनी मेहनत, अपने हौसले और अपने यकीन की आवाज को हमेशा जिंदा रखो, जिस तरह एक सुरीला गीत दिलों को सुकून देता है, इसी तरह मुस्बित सोच इंसान की जिंदगी को खुशियों से भर देती है। तो आइए गमों को पीछे छोड़ते हुए नए ख्वाबों और नई उमंगों के साथ आगे बढ़ें, अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत नगमा बनाएं और हर कदम पर कामयाबी की धुन छेड़ते रहिए। पेश खिदमत है हौसला, उम्मीद और खुशियों का पैगाम लिए ये दिलकश प्रोग्राम, भुलाए नहीं भूलते।

वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। फिल्म हमसाया का गीत अभी आपने सुना। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फिल्म शहनाई से लिया गया ये गीत।

दोस्तों, फिल्म शहनाई से लिए गया गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म पाकीज़ा से लिए गया गीत। सामिने कराम, मोहब्बत के जज्बात जब फ़ज़ा में घुल जाएं, हवाओं में नरमी उतर आए और यादों की खुशबू दिल के दरीचों को महका दे, तो हर मंज़र एक खूबसूरत दास्तान है

कब बन जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैसा लाजवाब नगमा, जो मोहब्बत की लताफत, इंतज़ार की कसक और दिल की धड़कनों को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। ये गीत सिर्फ एक नगमा नहीं बल्कि एहसासात का एक हसीन सफ़र है, जहां हर लफ्ज़ दिल की गहराइयों को छूता हुआ महसूस होता है। रोमानियत से भरपूर ये नगमा बरसों गुजर जाने के बावजूद अपनी दिलकशी बरकरार रखे हुए है और आज भी मौसिकी के शायकीन के दिलों में खास मुकाम रखता है। जब ये नगमा बसता है तो यूँ महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो और मोहब्बत की खुशबू हर सु फैल गई हो। तो आइए मोहब्बत के इन हसीन रंगों और यादों की दिलकश वादियों में खो जाते हैं। पेश खिदमत है फिल्म पाकिज़ा का शोहर आफाक नगमा मौसम है आकशिकाना, जिसे अपनी सुरीली आवाज़ में अमर किया है लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं।

मौसम है आशिकाना, ये लाजवाल गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म मदर इंडिया से लिया गया गीत। दोस्तों, जिंदगी खुशियों और गमों, कामयाबियों और नाकामियों, उम्मीदों और आजमाइशों का हसीन इम्तिजाज है। इंसान चाहे कितनी ही मुश्किलात से क्यों ना गुजरे, जिंदगी का सफ़र जारी रखना ही उसकी असल पहचान है। आज का ये लाजवाल फिल्मी नगमा हमें हौसले, सब्र और जद्दोजहद का पैगाम देता है। इसके बोल जिंदगी की एक अटल हकीकत बयान करते हैं कि दुनिया में आने वाले हर इंसान को हालात का सामना करना पड़ता है, मगर हिम्मत और अज़्म के साथ आगे बढ़ने वाले ही अपनी मंजिल पाते हैं। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, ये गीत फिल्म किस्मत से लिया गया है। मोहब्बत की दुनिया में बाज निगाहें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे दिल की धड़कनों को तेज कर देती हैं। आइए इस तेजी को इस फिल्म गीत में सुनते हैं।

दोस्तों, फिल्म हमराज से लिया गया गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म गाइड से लिया गया गीत। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब वो जीने की चाह में पागल हो जाता है, और कभी कभी ऐसे हालात से गुजरता है कि उसे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं होती। तो जीने और मरने की मिली जुली जो आरजू है वो जब बेदार होती है तो कुछ इस तरह की सदाएं बेदार होने लगती हैं।

फिल्म गाइड का गीत अभी आपने सुना, आइए सुनते हैं फिल्म गैम्बलर से लिया गया गीत। फिल्मी मौसीकी के सुनहरी दौर के कुछ ऐसे नगमे होते हैं जो अपने दिलकश बोल, मशहूर कुन धुन और मुनफरिद अंदाज पेशकश की बदौलत हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आइए आज का ये नगमा भी इन्हीं शाहकारों में शामिल है। ये गीत राजो नयाज, हुस्न अदा और दिल की उन अनकही बातों का हसीन इम्तिजाज है। आइए सुने।

फिल्म नील कमल के इसी गीत पर दोस्तों भुलाए नहीं भूलते के तहत पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आइए दोस्तों नए रंग प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं पयाम शप्पा जैदी की जबानी।

गुजरे हुए जमाने को याद न कर कभी कुमार, और जो याद आ ही जाए तो अश्क बहा के भूल जा। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, बार बार पुरानी बातों को दोहराना दिल को मजीद बोझल कर देता है, इसीलिए हाल में जीना सीखें। अगर कोई याद सताए

है तो इसे दिल में कैद न रखें। रो लेना, दुआ करना या किसी से बात कर लेना दिल को हल्का कर देता है। चाहे गलती अपनी हो या किसी और की, माफ कर देना दिल के सुकून के लिए जरूरी है। नफरत इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। हर जख्म वक्त के साथ भर जाता है। सब्र करें और खुद को संभालने का मौका दें। जिंदगी का हुस्न आगे बढ़ने में है। नई उम्मीदें, नए ख्वाब और नई कोशिशें ही इंसान को जिंदा रखती हैं। हर दुख और खुशी उसी की तरफ से है। उस पर यकीन रखने से दिल को इत्मीनान मिलता है। माजी की तलखियों को दिल पर बोझ ना बनाएं। अगर याद आए तो आंसुओं के साथ बहा दें और नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं।

0: यह आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर चंद लम्हों में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त

अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 के

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।
1: Maya Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. Iske antargat aaj suniye Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Tashak. Isme bhaag le rahi hai Professor Sushma Yadav aur varishth patrakar Aditi Tandon. Karyakram ka sanchalan kar rahi hai Sonu Sood.
2: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aap se jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aap se discussion karna chahenge, chahe wo Pradhanmantri Jandhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए। सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
3: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति। उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत @2047 है
2: जी।
3: उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है जो दिखाई देती है। मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
2: जी,
3: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज, इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात

0: कर रही थी जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी, लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी की 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया। देखिए, पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे,
1: जी
0: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहां कैश नहीं है, लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है, हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना, जो पीएम मुद्रा योजना है, उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है, वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी हैं, और उन कारोबारों से आगे चलना, मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लखपति से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं, विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिला,

तो इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यहीं तक। इजाजत दीजिए माधुरी को और अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। वेनेजुएला गणराज्य की कार्यवाहक राष्ट्रपति

एलसी रॉड्रिगेज अपना भारत दौरा पूरा कर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हो गईं। सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल प्रमुख डॉ. राजेश गांवड़े, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिनव देशमुख, मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर सौरभ कटियार और अन्य गणमान्य व्यक्ति हवाई अड्डे पर विदाई देने के लिए उपस्थित रहे। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और कार्यक्रम है आपका अपना पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका नाम है सुरतिया और इसे आपके लिए लिखा है वंदना अवस्थी दुबे ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।

0: तो लोग इसी कोच में कहां से घुसा है? चलो चलो यहां से।
1: क्या हुआ भाई डीटी साहब?
0: कुछ नहीं साहब, बताइए आपको कुछ चाहिए क्या?
1: अरे नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो बताइए ये कि अलीगढ़ स्टेशन कब तक आएगा?
0: अलीगढ़ उससे बहुत टाइम है साहब, आप आराम कीजिए, मैं समय से पहले आपको बता दूंगा।
1: ठीक है साहब ठीक है। वैसे अच्छा गा रहे थे वो लोग, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। सच ही तो है, कोई यादें छोड़ जाता है तो किसी को यादें कभी नहीं छोड़ते, जिंदगी भर साए की तरह साथ रहती हैं। समझ नहीं आया क्या ये यादें सहारा होती हैं, ये यादें नश्तर बनकर कुरेदती हैं पुराने जख्मों को।
0: नमस्ते बाऊजी।
2: बाहर बरामदे में बैठे बाऊजी यानी रामस्वरूप शर्मा जी सुधीर के दोस्त आलोक के इस संबोधन और उसके पैर छूने के उपक्रम से गदगद

0: हो गए।
1: ठीक है बेटा ठीक है। अरे अब बुढ़ापे में और कैसा होना है। भगवान जितने दिन अभी और कटवाए यहाँ काटेंगे है? अब बताओ भाई अपनी इच्छा से कब कौन आया है और कब कौन गया है? शरीर है तो हारी बीमारी है, लाचारी है, अब क्या कीजिएगा भाई, सब झेलना पड़ता है।
0: किसी को अपनी ओर मुखातिब देख बाऊजी ने सारी बातें एक साथ कह लेनी चाहीं, लेकिन तब तक सुधीर अंदर से आ गया। बोलते हुए बाऊजी की ओर उसने जिन नजरों से देखा।
2: क्या बाबूजी, आप भी हर किसी को चढ़ने लगते हैं।
0: बाऊजी एकदम से चुप हो गए, जैसे किसी छोटे बच्चे को चुप करा दिया गया हो।
3: अच्छा बाबूजी, चलते हैं हम, फिर आऊंगा।
1: जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो।
0: फिर आऊंगा कह के जाने वाला आलोक आएगा तो, लेकिन सुधीर के पास उनके पैर छूने झुकेगा, हालचाल पूछेगा और फिर पूरा हाल सुने बिना ही सुधीर की ओर बढ़ जाएगा। अब कोई नई बात नहीं रह गई है। शुरू शुरू में उन्हें बहुत बुरा लगता था, अब उम्र भी तो 81 बरस की हो रही। दिमाग की मशीन, आखिर क्या क्या और कितना याद रखे।
1: और क्यों क्यों याद रखा जाए उन कसैली यादों को जिनके दामन में सिर्फ कड़वाहट है। काश कोई ऐसी छलनी होती जिसमें कड़वी और कसैली यादों को और मीठी यादों को छानकर अलग अलग कर पाते, तो कितना अच्छा होता ना।
0: बाऊजी यानी शर्मा जी शहर के डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अपनी जिंदगी के लगभग 40 साल उन्होंने इसी शहर में गुजार दिए हैं। गांव से कस्बा और कस्बे से शहर होते देखा है उन्होंने इसे। अभी बहुत बड़ा शहर नहीं हो पाया है, सो पैर छूने की परंपरा किसी हद तक बाकी है। छोटे बच्चे बड़े होने तक इसे निभाएंगे, इसमें संदेह है शर्मा जी को। कॉलेज के प्राचार्य की हैसियत आप समझ सकते हैं, कितना रुतबा होता है उसका। फिर यदि कोई ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ प्राचार्य हो तो कहना ही क्या। शर्मा जी ऐसे ही प्राचार्य थे। व्यवहार के मामले में शर्मा जी इतने अच्छे कि धीरे धीरे पूरा शहर ही उन्हें बाऊजी कहने लगा। विषय की इतनी जबरदस्त पकड़ कि उनके पढ़ाने के बाद दोबारा उस टॉपिक को समझाना तो दूर, भूलने की नौबत तक ना आती थी। मैं भी उनकी एक विद्यार्थी रही हूँ, सो उनके बारे में हर छोटी बड़ी बात जानती हूँ। चकराइए नहीं, मैं यानी इस कथा की सूत्रधार, कहानी है ना, सुनाने वाला तो चाहिए। और चूंकि सूत्रधार हूँ तो मेरा दायित्व है कि इस कथा को आगे बढ़ाऊं, बस वैसे ही जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ रही है।
1: सब आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। अरे तुम, मेरा शहर पीछे क्यों रह जाता, मेरा परिवार पीछे क्यों रह जाता? उनको भी तो जमाने के साथ कदम से कदम बढ़ाना है ना। आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। वो मेरा पोता गुड्डू छोटा सा है, छोटा सा, अरे देखो कैसा तेज है, बड़ा स्मार्ट है।
0: गुड्डू को मोबाइल में व्यस्त देख बाऊजी ने पूछा।
1: अरे वाह गुड्डू पंडित, क्या खेल रहे हो?
4: खेल नहीं रहा बाऊजी, ये कोलाज बनाने का एक नया ऐप आया है, उसे ही डाउनलोड कर रहा हूँ। कोलाज समझते हैं ना आप?
0: बाऊजी कॉलेज के दिनों में बनाए गए अपने तमाम पेपर कोलाज में खो गए। ड्राइंग से संबंधित हर चीज उन्हें पसंद थी। कितनी ही पेंटिंग्स उन्होंने अपनी नई उम्र में बनाई थी, ऐसी अद्भुत पेंटिंग्स कि लोग हाथों हाथ ले जाते, यहाँ तक कि उस वक्त की एक भी पेंटिंग उनके पास नहीं।
1: हाँ बेटा जानता हूँ, कोलाज क्या होता है ये तो जानता हूँ, अब अगर ये मोबाइल वाला कुछ अलग है तो पता नहीं।
0: बाऊजी ने अपनी स्मृतियों में खोए हुए ही जवाब दिया।
1: कोलाज, अरे वो भी मोबाइल से, जीते जागते रंगों का कोलाज और वो भी मोबाइल से, भला उसमें भी कोई जीवन झलकेगा है? कोलाज और रंगों के बीच जिंदगी कैसे जागती है, ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा गुड्डू बेटा।

0: जिंदगी को हर पल अपने करीब से देखने वाले बाऊजी अपने जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे। बाऊजी का नाम आज भी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों की सूची में विश्वविद्यालय की दीवार पर अंकित है। पता नहीं कितने गरीब लड़कों की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें सभी खरीद के दिलवाते रहे। पूरे घर पर ये रुआब कि बाऊजी हंस रहे हैं तो सब हंस रहे हैं, बाऊजी तनाव में है तो सब तनाव में। बाऊजी कह दे आज तो दावत होगी घर में तो बच्चे नाचने लगते। बड़ी मम्मा यानी बाऊजी की धर्म पत्नी उन्हें सब इसी संबोधन से बुलाते हैं। रसोई की ओर रुख करती, बाऊजी पूरा मेन्यू बनवाते। आप सोच रहे होंगे कि हम इतना सब कुछ क्यों बता रहे हैं। अरे भाई न बताएं तो आप बाऊजी को जान पाएंगे नहीं ना।
1: बाऊजी, क्या बाऊजी, कब से आवाजें लगा रही हूँ आप सुनते ही नहीं। कितनी बार कहा है कान की मशीन लगाए रहा कीजिए, अगर नहीं लगानी थी तो खरीदवाई ही क्यों। 25,000 की मशीन पड़ी है बिस्तर पर और मैं गला फाड़ फाड़ के पागल हुई जा रही हूँ।
0: सरोज, बाऊजी की मंझली बहू झल्लाई हुई आवाज इतनी तेज थी कि अगर कोई बाहर के गेट पर होता तो भी सुन लेता।
2: हाँ बेटा, लगा लेता हूँ, जाके लगा लेता हूँ।
0: अतीत में विचरते बाऊजी भी इस आवाज से वर्तमान में लौट आए।
1: अरे बाऊजी, ये तो बता दीजिए कि रात में क्या खाएंगे। पनीर की सब्जी बन रही है, आप तो खा ही नहीं पाएंगे। खिचड़ी या दलिया बनवा दूं क्या।
2: हाँ बेटा, जो आराम से बन जाए बनवा दो।
1: लो फिर चल पड़े।
2: वैसे एक आध रोटी पनीर के साथ तो मैं भी खा सकता हूँ।
1: अरे नहीं बाऊजी, इतनी मसालेदार सब्जी खाने की जरूरत नहीं है आपको। नुकसान कर जाए, पेट खराब हो जाए तो फिर एक नई मुसीबत। वैसे भी पनीर हैवी होता है, आपको गैस बनने लगेगी।
2: ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसे करो।

0: और क्या है।
1: नीरीह आवाज में बाऊ जी से जो कहा गया सो कह दिया, लेकिन मन ही मन वो शायद यही सोच रहे थे कि
0: जब तय कर ही लिया है तो पूछना क्या, बना दो कुछ भी, अब तो बस पेट भरने से मतलब है। इच्छा निच्छा कहाँ रह गई है हमारी। अरे कह देती कि ठीक है एक रोटी आप भी खा लीजिए पनीर के साथ। अरे भाई पेट का क्या है, वो तो कभी खिचड़ी से भी खराब हो सकता है, गैस तो मूंग की दाल खाने से भी बनने लगती है। अरे तो इस उम्र में काहे को इतनी पाबंदियां लगाना खाने पर है। मन से खाई जाने वाली कोई भी चीज नुकसान नहीं करती, भाई मेरा तो ऐसा ही मानना है।
1: बाऊ जी उठ के अंदर चले गए अपने कमरे में। कान की मशीन लगा ही लें तो ठीक है, कल सुधीर का 25,000 भी दे दें निकलवा के तो ठीक रहेगा। हालांकि गलत तो नहीं कहा सरोज ने, लेकिन तब भी कई बातें अच्छी नहीं लगती बाऊ जी को। मशीन की कीमत की जगह उपयोगिता याद दिला देती ना। वैसे भी जब से मशीन का पैसा दिया सुधीर ने, कई बार याद दिला चुकी है सरोज। पहले तो उनका ध्यान ही नहीं गया था, लेकिन बाद में लगा कि जब पहली मशीन उन्होंने खुद पैसा देके खरीदी थी तब तो नहीं टोका सरोज ने कभी। कल कहेंगे सुधीर से ऑफिस से लौटते वक्त निकालता लाए। वैसे भी पैसे के मामले में बाऊजी कोताही नहीं करते। भगवान की दया से पेंशन के 35,000 रुपए मिल रहे हैं उन्हें। पूरे 15,000 निकलवा के रख देते हैं सरोज के हाथ पर।
2: अरे बाबूजी, इसकी भला क्या जरूरत थी।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, सरकार दे रही है पेंशन, तो मुझे करना क्या है इसका बेटा, वक्त जरूरत के लिए भी है मेरे पास। महंगाई बहुत है मैं जानता हूँ, रख लो घर में काम आएंगे पैसे, रख लो।
1: सरोज और सुधीर दोनों का ही महीने के पहले हफ्ते में मूड बहुत अच्छा रहता है, तब तक जब तक बाऊजी ने पैसा नहीं दिया। उसके बाद फिर रोज के ढर्रे पर ही उनका मूड भी चलने लगता है। लेकिन ये बुरा नहीं लगता बाऊजी को। टीवी ऑन करके बैठ गए बाऊजी, सीरियल वे देखते नहीं, न्यूज में एक ही न्यूज को इस कदर दिखाते हैं चैनल वाले कि बाऊजी उकता जाते हैं। सुबह का पढ़ा अखबार फिर से पढ़ने लगते हैं, जो कुछ छूट जाता है उसे खोज खोज के पढ़ते हैं। वैसे बहुत सी खबरें और खासतौर से संपादकीय पृष्ठ छूट ही जाते हैं सुबह। सुधीर एक ही पेपर लेता है ना, उसके दफ्तर में सारे अखबार आते हैं, सो कहता है काहे को दो दो पेपर लेना। एक पेपर आने से दिक्कत ये है कि बाऊ जी को जल्दी से पढ़ के पेपर सुधीर को देना होता है। पहले वे आराम से पढ़ते रहते थे, तो एक दिन सुधीर ही झल्ला के बोला,
3: क्या बाऊ जी सुबह से आप ही पकड़े हैं अखबार, जल्दी पढ़ लिया कीजिए ना, या फिर बाद में पढ़ा कीजिए, आखिर आपको करना ही क्या है दिन भर, चाहे जब पढ़िए बाद में।
1: अब अपने ही लड़के को कोई क्या याद दिलाए कि पेपर तो सुबह ही पढ़ने का असली आनंद है। खैर तब से जल्दी जल्दी हेडलाइंस पर निगाह डाल लेते हैं बाऊ जी, लेकिन सुधीर के ड्राइंग रूम में आते ही पेपर उसकी ओर बढ़ा देते हैं। एक बार कहा भी बाऊ जी ने,
0: अरे सुधीर बेटा मैं सोच रहा था कि अगर एक और पेपर मंगवाने लगते तो।
3: बाऊ जी खबरें तो वही छपनी है दूसरे अखबार में भी, तो काहे को पैसा बर्बाद करना, आपके पास पूरा पूरा दिन खाली रहता है, आखिर करना क्या है आपको, पढ़े पढ़े अखबार ही पढ़ते रहिए।
1: उसके बाद कुछ नहीं बोले बाऊ जी। मन तो था कहने का कि वो दे दिया करेंगे 150 रुपए अलग से दूसरे अखबार का, लेकिन फिर नहीं कहा, चुप लगा गए। पता नहीं क्या सोचे बेटा बहू। एक समय के बाद बच्चे भी कितने पराए लगने लगते हैं।
2: बाऊजी, बाऊजी, खाना आपके कमरे में ही भिजवा दूं या यहाँ आ रहे हैं?
1: आवाज ऊंची करके पूछा सरोज ने, ताकि बाऊजी एक ही बार में सुन ले। जवाब देने से पहले उठ के डाइनिंग रूम की ओर चल दिए थे बाऊजी।
3: अरे यार वहीं दे दो ना, यहाँ कहाँ बैठेंगे, इतनी देर तक खाना खाते रहते हैं, वहीं दे आया करो उनके रूम में।
1: सुधीर की आवाज पड़ गई थी बाऊजी के कानों में, उन्हें लगा लौट जाएं, लेकिन फिर आ गए टेबल तक अपनी कुर्सी के पास। उनकी कुर्सी पर गुड्डू सुधीर का बेटा बैठा था। सुधीर ने फौरन दूसरी कुर्सी की ओर इशारा किया बाऊजी को। बाऊजी उसके इशारे पर दूसरी कुर्सी खिसका कर बैठ गए। वैसे आदत तो उन्हें अपनी उसी कुर्सी पर बैठने की है। अब आपको लगेगा कि भाई इसमें क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी बैठ गए, लेकिन सबकी आदत होती है ना अपनी एक निश्चित जगह पर बैठने की। फिर बाऊजी तो

0: दिनों से बैठते चले आ रहे हैं उस जगह। खैर, जब तक बड़ी मम्मा थी तब तक बाऊजी का वही पुराना रुतबा चल रहा था, लेकिन उनके जाते ही कितने अकेले हो गए हैं बाऊजी। बड़ी मम्मा के रहते उनका चाय, नाश्ता, खाना सब उसी अंदाज में चल रहा था जैसे रिटायरमेंट से पहले चलता था। बड़ी मम्मा बादाम छुआरे रात में भिगोती तो सबके नाम के चार चार बादाम और दो दो छुआरे भिगोती, बाऊजी का हिस्सा निकाल के बाकी सरोज को थमा देती, दूध में उबाल के बादाम छुआरा देती, तब कहीं बाऊजी की दिनचर्या शुरू होती। बादाम छुआरे तो अब भी भीगते होंगे लेकिन बाऊजी को पता नहीं। उनके पेट और बढ़ती उम्र का हवाला देकर ये चीजें अब बंद कर दी गई हैं। ठीक ही किया होगा बच्चों ने।
1: बाऊजी, आपके फोन की घंटी बज रही है।
0: बाथरूम के बाहर से सरोज ने चिल्ला के बताया। झटपट हाथ धो के बाऊजी बाहर निकले। उनके फोन की घंटी अब कम ही बजती है, सो उन्हें उत्सुकता थी। फोन कट गया था अब तक। उठा के देखा तो उनके पुराने साथी, सहकर्मी और घनिष्ठ मित्र राम बिहारी गौतम जी का फोन था। तुरंत फोन मिलाया बाऊजी ने।
2: हेलो, कहिए शर्मा जी, क्या हाल चाल है? कब आ रहे हैं अपने गांव?
3: गौतम जी, अरे बहुत अच्छा लगा भाई आपने फोन किया है। अब क्या बताएं, मन तो बहुत होता है आने का, लेकिन अब उम्र और ऊपर से ये कान की समस्या, अब क्या बताऊं मैं। तबीयत की तरफ से भी डर लगता है भाई, तो अकेले हिम्मत ही नहीं पड़ती है, जबकि मन में तो वही रहता है। अब क्या कहें, अब रहते यहां हैं और मन जो है गांव में
2: अरे
3: रहता है।
2: साहब, आप भी कहाँ लगे हैं तबीयत में। हाँ, तबीयत जब बिगड़नी होगी तब कहीं रहे बिगड़ेगी ही,
3: हाँ सो तो है।
2: और कान की भली कही। अरे कौन सा भाषण सुनने जा रहे हैं? टिकट कटवाओ और बैठ जाओ ट्रेन में। हम उतार लेंगे इधर। दोनों जने मिलजुल के रहें कुछ दिन तो लगे कि जिंदा हैं।
0: कितनी खरी बात कही गौतम ने, मिलजुल के रहें तो लगे जिंदा हैं।
4: बाऊजी, परसों सुनील और बहू आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। आप गुड्डू के कमरे में शिफ्ट हो जाइएगा ताकि उन दोनों को आपका कमरा मिल जाए। बाथरूम भी अटैच है ना वहाँ, तो वही कमरा ठीक रहेगा उनके लिए। और आप अपना जरूरी सामान यहीं रख लीजिएगा।
3: जरूरी सामान, शिफ्ट हो जाओ। अब मुझे मेरे ही कमरे से शिफ्ट कर दिया जाता है। कभी ये आ रहा है तो बाबूजी शिफ्ट हो जाओ, कभी वो आ रहा है तो बाबूजी शिफ्ट हो जाओ। अरे मुझसे ज्यादा तो ये इस सामान की अहमियत ज्यादा है जिसे जरूरी कहा जाता है। इनका बाप इनके लिए जरूरी नहीं रहा, ये सामान जरूरी है। सुन रही हो ना सुधीर की माँ? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ तुम चली गई, बहुत अच्छा हुआ।
0: गुड्डू ने झटपट अपनी टेबल खाली कर दी थी। बाऊजी ने वहीं अपना सामान जमाया। दो तीन दिन खूब रौनक रही घर में। सुनील कोलकाता में है और उसकी बीवी बंगाली है। जाने के एक दिन पहले ड्राइंग रूम में दोनों भाई और उनकी पत्नियां बैठक जमाए थीं। वहां से आती आवाजों पर बाऊजी ने ध्यान लगाया तो समझ में आया कि उन्हीं के बारे में बात हो रही है।
4: अब क्या बताऊं सुनील, तुम समझ नहीं पाओगे। बाऊजी हमेशा यहीं जमे रहते हैं, दिन भर घर में, कहीं आना जाना तो होता नहीं इनका। अरे इनके कारण हमारी जो सोशल लाइफ है ना, बिल्कुल चौपट सी हो गई है। कभी किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो 100 बार सोचना पड़ता है कि जाएं कि ना जाएं, इनका क्या होगा।
1: अरे एक जमाना हो गया इनके साथ घर से निकले हुए, अब भला मैं क्या क्या बताऊं सुनील भैया। कहीं बाहर जाना हो तो पहले बाऊजी का खाना बनाओ। ओफो, मेरी तो कमर ही टूट जाती है दिन रात इनकी सेवा टहल करने में, और सेवा टहल का कोई जस नहीं है।
4: तो और क्या क्या बताएं यार, तुमको कितनी समस्या है, यू डोंट बिलीव इट। बाऊजी को तो तुम जानते हो, शुरू से छोटी छोटी बातों पर इन दिनों इतना तनाव पैदा हो जाता है कि घर का माहौल।
1: हाँ, और इसका असर अब गुड्डू पर भी पड़ने लगा है।
3: ये क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं ये लोग। मैं तनाव पैदा कर देता हूं, मेरी सेवा टहल में इसकी कमर टूट जाती, मेरी बातों का असर

0: ये बात तो मुझे भी समझ में आ रही थी कि बाऊजी जैसे शांत स्वभाव वाले व्यक्ति को भी ये दोनों पति पत्नी अपने पास नहीं रखना चाहते। इतना पैसा देते हैं बाऊजी, तब भी इन्हें परेशानी है। एक भी काम बाऊजी के मन का नहीं करते और बाऊजी फिर भी चुप रहते हैं। कोई बकर बकर करने वाला बुढ़ा होता तब आती इनकी अकल ठिकाने।
1: लेकिन भैया हम दोनों ही नौकरी करते हैं, और फिर कोलकाता जैसा शहर, कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, तबीयत बिगड़ जाए अचानक, तो कहाँ ले जाएंगे? हर अस्पताल 20 किलोमीटर दूर है, और फिर शर्मिला को हिंदी बहुत समझ में भी नहीं आती, और ये समझ भी ले तो बाऊजी को इसकी हिंदी समझ में नहीं आएगी।
2: कमाल है यार सुनील, हम लोगों ने पट्टा नहीं पाया क्या इनके लिए? जीवन भर इनका बोझ हम ही लाते रहेंगे बस।
3: अरे शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब सुनील भैया आप बुरा न मानिएगा, इनको गुस्सा ज्यादा आ जाता है, पर बात तो पते की कह रहे हैं। शर्मिला को हिंदी नहीं आती ये तो कोई बात नहीं हुई, शर्मिला नौकरी करती है तो हम यहाँ कौन सा खाली बैठे हैं। उसे तो तनख्वाह मिलती होगी, हम तो मुफ्त की चाकरी बजा रहे हैं। हाँ आखिर हमें भी थोड़ा सुकून चाहिए, हम भी तो पति पत्नी की तरह जी लें, उम्र पूरी बीती जा रही है। और सुनील भैया शर्मिला को भी तो बाऊजी की सेवा टहल का पुण्य मिल जाए।
4: इना चोल बे सुधीर दा, ए बाऊदी इका बोलता है, हम तो डेली मच्छर झोल बनाता है। बाऊजी विल नॉट फील कंफर्टेबल एट ऑल, बोल देता है वो तो वेजिटेरियन है ना।
1: दैट इज द पॉइंट सुधीर,
4: कैसे करेगा?
1: हाँ बाऊजी को कैसे चलेगा ये सब, उन्होंने जिंदगी भर कभी अंडे को छुआ नहीं।
2: कमाल है कि अंडा नहीं खाते।
5: ये मेरे बारे में बात हो रही है, ये मेरे मेरे बच्चे, ये मेरी औलाद, ये इनको मैंने बड़ा किया, ये मेरी उंगली पकड़ कर चलना सीखे, इनको अपने कंधों पर बिठाकर मैंने मेले दिखाए, मैं अब और नहीं सुन सकता।

0: आज उन्हें चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा था और याद आ रही थी अंतिम समय में कही गई मम्मा की वो बातचीत।
1: सुधीर के बाऊ, ये लड़के तुम्हारे रहने का फैसला करे, खुद पर बोझ समझे, उसके पहले तुम्हें अपना फैसला लेना है।
2: सही कहा था तुमने, सही कहा था सुधीर की बात, सही कहा था।
0: सुबह जब सुधीर उठा तो बाऊजी तैयार होके ड्राइंग रूम में बैठे थे।
3: अरे कहाँ की तैयारी है बाऊजी इतने सवेरे से?
2: कुछ नहीं बेटा, वो गौतम जी बहुत दिनों से बुला रहे थे ना, तो अब क्या है कि हम दोनों एक ही अवस्था के लोग हैं, वो भी अकेले हैं, तो कुछ दिन अब उनके पास रहने का मन है तो हम जा रहे हैं।
3: अरे जा रहे हैं लेकिन टिकट?
2: टैक्सी करके जाऊंगा बेटा, ट्रेन वेन में यात्रा करने की इच्छा नहीं है।
1: अरे बाबूजी, टैक्सी तो कम से कम 10,000
2: हैं, मेरे पास पैसे हैं बेटा। अरे बहू, 10,000 क्या, मैं 20,000 दे सकता हूं।
0: बाऊजी का खोया हुआ आत्मविश्वास चमक रहा था चेहरे पर।
4: अरे बाऊजी, अब जा रहे? मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा? देखिए देखिए, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि गुड्डू बेटा तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और ये तो नेशनल एग्जीबिशन है बाऊजी, और इसमें फोक पेंटिंग बनानी है। फोक पेंटिंग?
1: चुप कर गुड्डू, चुप।
4: मामा, यू नो फोक पेंटिंग?
1: अरे गुड्डू, अरे बाऊजी कैसे बनवाएंगे पेंटिंग, उन्हें आती है क्या? मैंने करीम भाई से बात कर ली है, वे पेंटर है ना, सो

0: क्या पेंटिंग बनवा देंगे?
1: समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे ना वो पेंटर वाली पेंटिंग नहीं चाहिए, मेरा नंबर नहीं मिलेंगे, कई लड़के बनवा रहे हैं उनसे, मुझे तो ना वो बाबूजी वाली ही पेंटिंग चाहिए। अरे मुझे फर्स्ट आना है भाई, और तुम्हें पता नहीं शायद बाबूजी तो कोलाज भी बना लेते हैं।
0: अरे काहे का कोलाज बनाना है।
2: टैक्सी आ गई थी और बाबूजी पूरे ठसके के साथ उस पर सवार होकर हाथ हिलाते हुए चले गए। गुड्डू ने किसी प्रकार राम राम करते हुए एक महीना गुजारा। घर में और लोगों को तो पता ही नहीं चला, लेकिन गुड्डू का मन बाबूजी के बिना नहीं लग रहा था। वैसे मम्मी को भी उसने कई बार पापा से कहते सुना था,
3: कमाल है सरोज यार, खाने में फिर वही लौकी, कल कद्दू, फिर लौकी, क्या तमाशा।
0: भूल जाओ पनीर और कोफ्ते, हाँ इतनी तनख्वाह में लौकी और कद्दू ही मिलेंगे।
3: क्या तमाशा है ये,
0: जब से बाबूजी गए हैं हाथ बांध के खर्च करना पड़ रहा है। बाबूजी के 15,000 बहुत बड़ा सहारा था, अब समझ में आ रहा है घर कैसे चलता था। हाँ
3: बात तो तुम ठीक ही कह रही हो।
1: लेकिन मम्मा आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि बाबूजी जरूर आएंगे।
3: तुम्हें कैसे पता कि बाबूजी जरूर आएंगे?
1: बाबूजी ने मुझे बताया था।
4: गुड्डू बेटा, मैं जल्दी ही तुम्हारी पेंटिंग बनवाने आऊंगा, जरूर आऊंगा, चिंता मत करो बेटा, अभी तो टाइम है ना एग्जीबिशन में।
3: गुड्डू बेटा, क्या सचमुच बाबूजी ने तुमसे कहा था?
1: हाँ पापा, आपको क्या लगता है मैं क्या झूठ बोलूंगा?
2: गुड्डू ने सच ही कहा था और अगले दिन सुबह बाबूजी आ भी गए। बाबूजी के आते ही गुड्डू लिपट गया उनसे। सरोज को भी लगा जैसे घर भर गया हो फिर से। आते ही बाबूजी ने 1.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा प्लाई का टुकड़ा मंगवाया। दूध वाले से कहकर गोबर तो पहले ही रखवा लिया था, उसका घोल बनाया एक बाल्टी में और ब्रश से पूरी प्लाई पर एक कोट किया। सरोज कहती ही रह गई कि भाई पहले आराम कर लो, लेकिन बाबूजी अपने इस भूले बिसरे काम को करने में बेहद मगन थे। एक कोट करने के बाद ही वे अपने कमरे में गए, थोड़ा आराम किया और फिर काम में लग गए। अब दूसरा कोट किया गया, 1 घंटे बाद तीसरा कोट। अब प्लाई एकदम गोबर से लीपी गई, चिकनी जमीन जैसा दिखने लगा था। बाबूजी ने अपने सदे हुए हाथों से 50 बिंदु बनाए खड़िया मिट्टी के सफेद घोल से और फिर उन्हें मिलाने लगे। 2-2 बिंदु मिल रहे हैं, कलाकृति आकार ले रही है धीरे धीरे। अगले 1 ही घंटे में बाबूजी ने बुंदेलखंड के प्रसिद्ध सुरतिया को बोर्ड पर उतार कर रख दिया था। ये कलाकृति बुंदेलखंड के हर घर में बनाई जाती है दीपावली के समय। बगल में बैठा गुड्डू पूरे मनोयोग से देख रहा था बाबूजी को काम करते हुए, और जब पेंटिंग तैयार हुई तो हक्का बक्का सा देखता रह गया। झूम उठा गुड्डू, सुधीर और सरोज भी भौचक से खड़े थे, जैसे बाबूजी का एक नया ही अवतार देख रहे हों। अगले 3 दिन उत्सव से बीते। गुड्डू की पेंटिंग प्रथम आई थी और फिर इसे दिल्ली ले जाया गया, जहां इसे लोक कला भवन में आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय ने किया और इस पेंटिंग की जी खोल के तारीफ की। गुड्डू ने भी झूठ नहीं बोला था और खुल के बताया भी कि ये पेंटिंग उसके 80 वर्षीय दादाजी ने बनाई है। अगले दिन राष्ट्रीय प्रादेशिक सभी अखबारों में बाबूजी की सुरतिया बाबूजी की तस्वीर के साथ चमक रही थी। सुधीर और सरोज बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब पेंटिंग वापस आए और कब वे उसे अपने ड्राइंग रूम की दीवार पर लगाएं। और इधर शहर के तमाम ऐसे लोग जो कभी सुधीर के घर आने पर बाबूजी को प्रणाम तक करने में कतराते थे, आज बाबूजी को घेरे हुए हैं, हाथ जोड़े एक पेंटिंग उनके लिए भी बना देने की प्रार्थना कर रहे हैं। और बाबूजी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान है, आंखों में जिंदा होने का एहसास है।
4: जिंदा होना और जिंदा होने का एहसास दोनों अलग अलग बातें हैं। रिटायरमेंट के बाद शायद मैं सिर्फ जिंदा था, लेकिन मेरे पोते गुड्डू ने मुझे एक वजह दी और अब मैं जिंदा होने के एहसास के साथ जिंदा हूं। अब मैं अपनी जिंदगी को पूरी जिंदा दिली के साथ जीऊंगा।
1: रुक जाइए ना, कहाँ जा रहे हैं आप?
4: कहीं नहीं जा रहा हूं बेटा, कहीं नहीं जा रहा हूं, बस जिंदगी को एक बार और नजर भर देख लेना चाहता हूं। तू चिंता मत कर बेटा, तू जब भी कहे।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये कहानी सुरतिया, जिसे आपके लिए लिखा था वंदना अवस्थी दुबे ने। ये कहानी आपको कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए हम बेताब हैं। तो आप चाहें तो हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com। तो इसी के साथ कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी, इसको यहीं समेटते हैं। रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शेशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इजरायल के हमले में दो महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तानी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ

0: भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकेंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रवि साहब की आवाज़ के साथ। फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना आपने ये सदाबहार गीत। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब और संगीत था शंकर जयकिशन का। इस गीत को पिक्चराइज किया गया था देवानंद और आशा पारेख पर। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1961 में और इस फिल्म को लिखा, निर्मित और निर्देशित किया था नासिर।

हुसैन ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद और आशा पारेख ने। प्राण ने फिल्म में खलनायक का किरदार निभाया था और राजेंद्र नाथ ने सहायक भूमिका निभाई थी। और अब पढ़ते हैं हम अगले गीत की तरफ, जो है फिल्म साथी से मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

1968 में आई फिल्म साथी से सुन रहे थे आप ये गीत। आवाज थी मुकेश और सुमन कल्याणपुर की, संगीत था नौशाद साहब का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। इस फिल्म को निर्देशित किया था सीवी श्रीधर ने और फिल्म का संगीत तैयार किया था नौशाद साहब ने।

फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार, वैजंती माला, सिमी गरेवाल और पहाड़ी सान्याल ने। ये फिल्म 1961 की एक तमिल फिल्म की रीमेक थी। और अब हम सुनते हैं अगला गीत, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से गीता दत्त की आवाज़ में।

गीता दत्त की सुमधुर आवाज में सुना आपने ये गीत साहिब बीवी और गुलाम फिल्म से, और ये फिल्म 1962 में बनी थी और ये एक ऐसी एक बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक फिल्म थी ये, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है भारतीय सिनेमा के इतिहास में। और इस फिल्म का निर्देशन किया था अबरार अलवी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मीना कुमारी।

गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने इस फिल्म में मीना कुमारी द्वारा निभाया गया किरदार छोटी बहू भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली चरित्रों में से एक माना जाता है। ये फिल्म बिमल मित्र के उपन्यास साहिब बीवी और गुलाम पर आधारित थी। और अब हम सुनते हैं अगला गीत फिल्म श्री 420 से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 1:40 और 6 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

की आवाज़ में सुना आपने ये खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम था बेटी बेटे और संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म 1964 में आई थी और ये एक रोमांटिक फिल्म थी। इस गीत को जो अभी हमने आपको सुनवाया, इस गीत को अमर बनाता है रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़। और इस गीत को पिक्चराइज़ किया गया था सुनील दत्त और बी सरोजा देवी पर। ये गीत अपने दौर की उन गीतों में से एक है जो आज भी सुनने पर दिल सुकून से भर जाता है। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म हावड़ा ब्रिज से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur.

तेरे आने का धोखा सा रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। अजब है रात से आँखों का आलम, ये दरिया रात भर चढ़ता रहा है। सुना है रात भर बरसा है बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है, वो कोई दोस्त था 6 दिनों का, वो कोई दोस्त था 6 दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ, आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 38 सेकेंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के सुरों को, रात के जज्बात को, रात के दर्द को गीतों से, बातों से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को भी, कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं आशा जी की आवाज़ के साथ।

जब भी इस गीत को सुनो तो ऐसा लगता है वक्त ठहर गया हो, है ना। गजल पन्ने से उतर कर सामने बात कर रही हो, मन करता है बिखरे हुए शब्दों को बीन लिया जाए।

जब जिंदगी में कोई खास इंसान आता है तो अंधेरी रातें भी दियों की तरह जगमगा उठती है। रात के इस खामोश पहर में जब चारों तरफ अंधेरा है, मुझे लगता है इस गाने को सुनकर किसी की याद ने आपको अंदर से भीतर से रोशन जरूर किया होगा।

वैसे दोस्तों, रात का सन्नाटा अपनी जगह है, लेकिन इस गाने ने माहौल में एक अलग ही खनक घोल दी है ना। वो कहते हैं ना कि सादगी में ही सबसे ज़्यादा कशिश होती है। आजकल का जो ये मॉडर्न टाइम है, उसमें भी माथे की ये एक छोटी सी बिंदिया सच में पूरे दिल का चैन चुराने के लिए काफ़ी होती है।

तुमको पालने की धुन में मैंने दुनिया ओढ़ी, तुमको पालने की धुन में मैंने दुनिया ओढ़ी, रंग बिरंगे कपड़े पहने, पेशानी पर सूरज बांधा, आंगन भर में धूप बिछाई, दीवारों पर सब्जा डाला, फूल पत्तों से अपनी चौखट रंगवाई, मौसम आए मौसम बीते, सूरज निकला धूप खिली, फिर धूप चढ़ी फिर और चढ़ी, फिर शाम हुई और फिर गहरी काली रात हुई, तुमको पा लेने की धुन में मैंने दुनिया ओढ़ी।

1.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:43 और 50 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। रात सुरमई यानी एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के जज्बात को, रात के सुरों को अपनी बातों से, गीतों से समझने की कोशिश करते हैं, उस नब्ज को, उस दर्द को बयां करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं कार्यक्रम को, बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और सुनते हैं अगला गीत।

वैसे रात का ये समा सोने के लिए होता है, लेकिन जो दो लेकिन जो लोग दिल लगा बैठते हैं उनके लिए रातें तो बस यादों की महफिल बन जाती है। गाना कहता है कि प्यार करने की थोड़ी सी भूल कर ले। सच बताइए, इस वक्त जागते हुए क्या आप भी किसी की याद में ऐसी कोई हसीन भूल दोहरा रहे हैं? अगर दोहरा रहे हैं तो ये गीत और बातें आप ही के लिए हैं।

जज्बात से भरी महफिल रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे सुनेंगे आप समाचार, मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र। मंजू को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की

0: सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने भुजबल के आसपास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EA

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर. मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और समय है प्रोग्राम हमराही का. आप सबका एक बार प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं कार्यक्रम हमराही में. शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की महबूबा फिल्म के इस प्यारे से गीत के

दूरी चाहे कितनी भी हो, दूरी चाहे कितनी भी हो, सच्चा प्यार दिलों के बीच ही रहे, हर दूरी को मिटा देता है। यादों की खुशबू रात को भी महका सा देती है।

का सबसे सुंदर उपहार दिल का समर्पण है। जब दिल किसी अपने को सौंप दिया जाए तो हर धड़कन उसी का नाम गुनगुनाने लगती है।

इंतजार में भी एक अलग ही मिठास होती है, किसी प्रिय के आने की आस जीवन को नई रोशनी और नई खुशी से भर सा देती है।

सच्चे प्रेम में चेहरा नहीं, भावनाएं बोलती हैं। आंखों में छिपा अपनापन ही प्रेम का सबसे सुंदर आईना बन जाता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और प्रोग्राम फिलहाल चल रहा है हम राही।

चूड़ियों और कंगनों की खनक जैसे प्रेम की मधुर सरगम हो, जो हर पल प्यार की यादों को और भी करीब ले आती है।

प्यार के सफर में कभी कभी ऐसे खूबसूरत मोड़ आते हैं जहां दिल बस यही कह उठता है, ये कहां आ गए हम। और छोड़ के जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी यानी 4:10 पर फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए आपसे ले रही हूँ अनुमति। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, तो जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की संभावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतार ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। 21 वर्षीय सागर जगलान ने फाइनल में तामिर एशिनिमायेव को 3-2 से हराकर पुरुषों के फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Sharma and Shaktikant Das, also attended the meeting. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम अरुणिमा में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म ज्वेल थीफ से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, संगीतकार एस जी बर्मन।

और इस गीत के गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म राजपूत से मोहम्मद रफी और उनके साथियों की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म राजा से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कुर्बान से अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज में, गीतकार समीर संगीतकार आनंद मिलन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है वो है अरुणिमा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार मजू सुल्तानपुरी, संगीतकार एस जी बर्मन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम है अरुणिमा. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत. फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन.

और ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। जी हाँ, अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक ले रही हूँ आपसे थोड़ी देर के लिए अनुमति, और कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो जल्द हाजिर होती हूँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के

0: जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में कल श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा भी की। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कल मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। 21 वर्षीय सागर जगलान ने फाइनल में तामिर एशिनिमायेव को 3-2 से हराकर पुरुषों के फ्रीस्टाइल 74 किलो वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय पहलवान ने क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश के जयदीप को 7-2 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद सागर ने सेमीफाइनल में मंगोलिया के तोलुई मुखबंत को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 10-0 से मात दी। मौसम विभाग ने आज केरल कर्नाटक के तटीय इलाकों केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से भजन के साथ।

प्रार्थना प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मबल का स्रोत है। जब मन में विश्वास और कर्म में निष्ठा हो तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है।

जीवन में समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है, इसलिए हर दिन को सीख, सेवा और अच्छे विचारों से भरना ही जीवन की सच्ची सफलता है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना ही सफलता का रहस्य है। जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, अपनी मंजिल की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए।